சவாயிலே சவாய புதாத்தினி நிறை விபூதி சிருஷ்டிக்கா பசிபேரமா பரலாயமா மொய கிரந்து பகாத் முதியகி பாயக கோய் சைனா கோயிலே நிறை சர்வோதா सते रजर तमगुण पञ्चय महाभूत दशै सृष्टिका पहिले मही थिए भगत कोही थिएनन् अरू जो देख्छौ अहिले सबै बुझ तिमी मेरै विभूतिहरू सृष्टिका पछि फेर महाप्रलयमा मै ग्रहन्छु भगत मुदी

सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

उपहार स्वरूप यह तस्वीर माया करने भलै छोटो होला यहाँ सब दृश्य अटौला जिंदगी न रहोस रही रहने इसमें कैद पल तिमी छौ प्यारो मान्छे छ त्यो भन्दा अरु के नै चाहिन्छ एउटा माया।

0: you? Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैनीमा थप्लो सातमा गार्जबाट म पदे प्रसाद सार्पोट आज विक्रम सम्मत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन् 2026 अगस्त 12 तारीख श्रावण 27 गते बुधबार औंसी तिथि अब स्तुति गरौं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पै भरी

राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समा